0: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
1: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
2: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीस डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
3: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
4: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: और स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट था उसके बीच में काफ़ी सारे जो है राउडी टाइप लोग और किसी पर्टिकुलर पार्टी के लोग वहाँ पर मौजूद, या पर्टिकुलर जो है आप पहले की एंटी सोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं जो हम पे पत्थर जूते क्या बोलते स्टोन्स ऐसे वाले ब्रिक्स वो उन्होंने डाला, कांच की बोतल्स। ये तो हम भी हैरान थे, हम उसके लिए तैयार नहीं थे, हम स्टोन्स के लिए भी वर नॉट रेडी।
1: चोट लगी है आपको, ये स्टोन्स की वजह से लगी
0: स्टोन्स की वजह से, लेकिन जब स्टैम्पेड हुआ जब हम भीड़ को पीछे कर रहे थे तो वहाँ पर लड़कियाँ उन्होंने आगे दिखाई थी कुछ टाइम के लिए, तो वो लड़कियाँ थी और वो भाग नहीं पाई, वो मतलब भीड़ में इससे पहले कि लड़के उनको कुचल दें वो अपनी जान बचा के पीछे भाग रहे थे लड़के, और स्टैम्पेड में वो लड़कियाँ थी वहीं पर थी, और उन लड़कियों को बचाने के एवज में मैं जो है घायल हूँ, मैं नीचे भी झुकी थी और मेरा हाथ यहाँ ट्विस्ट हुआ है।
2: And well, needless to say, politics has erupted over the violence during yesterday's deep protest in capital New Delhi. Stone pelting, tear gas and clashes between protesters and cops left over 100 cops and several dozen protesters on the other side also injured. The opposition, meanwhile, has now united to target the centre over police action. Opposition leader Rahul Gandhi has called Prime Minister Modi anti-youth. Meanwhile, Priyanka Gandhi has questioned the use of force and tear gas against students, while SP Supremo Akhilesh Yadav and Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal and TMC's Mamata Banerjee have also launched sharp attacks on the centre. Now, as politics intensifies, the focus is on the dialogue between the government and the protesters now. This after the meeting with Union Minister JP Nadda. Protesters are now, in fact, waiting for the government's response to their three central demands. Meanwhile, here's what the leaders of opposition are alleging.
3: This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing.
4: Problems hai, bade bade issues hai. Aap discuss karne ke liye raji nahi hai, aur bachchon pe aap tear gas kar rahe ho aur unke unki pitai kar rahe ho, kis liye? Bachche hai hamare.
5: Thank you ma'am.
6: जो देखा और जो व्यवहार सरकार का और पुलिस का था, लाठी चलाना, आंसू गैस के गोले चलवाना, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस आकर के छात्रों को युवाओं के साथ जो व्यवहार किया है, सुनने में आ रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक टॉर्च भी थी या डंडी जो भी बोलेंगे उसको, लोगों को चोट लगी है, युवाओं के बड़े पैमाने पे चोट लगी है, बड़े पैमाने पे घायल हुए हैं। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे, ये सबसे बड़ा फेलियर है, और किसी फेलियर के लिए ही आए हैं लोग। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, और जो परीक्षा कराई जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें।
7: ये हमारे देश के युवा इस समय बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं। जिस तरह से हमारे देश का एग्जामिनेशन सिस्टम है, पहले पेपर लीक हो गए, सीबीएसई के पूरे इवैल्यूएशन सिस्टम में बहुत बड़ा स्कैम हो गया, बच्चों के नंबर सारे गलत आ गए, फिर रीनीट का पेपर हुआ, नीट का पेपर दोबारा हुआ, उसका पूरा इवेल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ हो गया, बच्चे शिकायत पे शिकायत पे शिकायत करते रहे लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब बच्चे और उनके पेरेंट्स कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके पास जाके गुहार करें, सरकार सुनती नहीं है। तो जब बच्चों ने सड़क पे उतर के आंदोलन किया, बच्चे क्या मांग रहे हैं, तो मांग रहे हैं एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक करो, शिक्षा की पद्धति ठीक करो, और तो कुछ नहीं मांग रहे बच्चे, कुछ गलत तो मांग नहीं रहे।
2: And well, from the clashes outside the parliament, now we take you to the stormy clashes inside it. You see, after a stormy opening day of the monsoon session, all eyes are now on day two of the parliament battle, which is ready to, in fact, unfurl in just a few hours from now. Meanwhile, the first day, it was marked by repeated disruptions, sloganeering, placard waving and uproar, with both Lok Sabha, the lower house, and Rajya Sabha, the upper house, witnessing multiple adjournments. The opposition raised the NEET issue and the temple donation row, leading to a sharp face-off with the government. Now the question is whether day two will see more disruptions or a return to normalcy, a return to debate. Opposition floor leaders are meanwhile set to meet this very morning while the NDA will hold its weekly strategy huddle, which is

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: The stage that has captured the pulse of leadership since 2006.
6: NDTV Profit Most Inspiring Leader of the Year Award goes to Mr. Anand Mahindra.
5: Celebrating visionary.

0: सदन में उठाकर इसको जो सारे देश को बताना चाहते थे उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। डेमोक्रेसी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही अजीब दिख रहा है। और मैं 60 साल में ऐसा तरीका जो सरकार ने आज ढूंढा है ऐसा कभी नहीं देखा। मैं 14 बार असेंबली, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा सब देखा हूं, लेकिन ऐसा नहीं। और हम ये चाहते हैं कि तुम चर्चा करने के लिए मौका दो, हम अपनी बात बताएंगे। क्यों लाठी चार्ज हुआ, क्यों उनको बच्चों को मारा गया, इसके लिए हम पूछने के लिए भी अगर यहाँ फोरम नहीं है तो कहाँ बात करें। और मैं वार्न करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अनार्की क्रिएट करने वाली है, अनार्की क्रिएट करने के लिए सब कर रही है। कोई अपोजिशन, कोई स्टूडेंट्स, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट या कोई जनता नहीं कर रही है, सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठी चार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए। दूसरी बात यह है कि कल भी जो हम बात करना चाहते थे उठाए, उस वक्त भी मौका नहीं दिया, लेकिन हमको जेल के जैसे अंदर रखा गया, बाहर आने नहीं दिया। क्या बात है, अरे पार्लियामेंट के बाहर भी अगर एमपीज नहीं आ सकते तो उनको सुरक्षा नहीं है तो किनको है। तो देश आज एक अराजकता के तरफ चल रही है और मोदी जी होम मिनिस्टर इसको कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं और वो अपनी बात सदन में रखना भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए ऐसे एटीट्यूड को हम कंडम करते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवा के साथ है, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवाओं के साथ है।
0: सरकार और पार्टी अगर युवाओं के साथ है, क्या बच्चियों के कपड़े फाड़ने के लिए, क्या बच्चों को लाठी मारने के लिए, क्या युवकों को दबाने के लिए और उनको आंसू बहाने के लिए लगाए आप और सुरक्षित रखने के लिए बोल रहे? अरे आपको दूसरों को टॉन्ट मारने के बजाय दूसरी कोई भाषा नहीं आती। हम देखे बहुत से लोग, कोई भी ऐसा नहीं करता। और ये प्राइम मिनिस्टर जी जो है खुद सबको डराने की कोशिश करते हैं, तो हम डरने वाले नहीं है। हम जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, युवा है, उनकी आवाज हम उठाते रहेंगे। और इसी के साथ जो राम मंदिर का भी हुआ उसके बारे में भी नेक्स्ट हम उठाएंगे और देश को बताएंगे। एक तरफ तो चोरी हो रही है, दूसरे तरफ सप्रेशन हो रहा है और हमारे जो बातें हैं उसको खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।
2: थैंक यू,
0: धन्यवाद,
2: थैंक यू वेरी मच।
1: मिनिस्टर के स्टेटमेंट की मांग आप कर रहे हैं।
2: थैंक यू वेरी मच।
3: Mallikarjun Kharge there, leader of the opposition in the Rajya Sabha, and Congress president issuing an important statement, talking to media people, saying that he's claiming that the BJP or the government, the NDA government, is destroying the demographic advantage that the country has, specifically by treating youngsters in a brutal manner. He's referring to the alleged brutalities that took place in the protest in National Capital yesterday. My colleague Aishwarya Jain joins us with more details on this. Aishwarya, Mallikarjun Kharge was also amongst the first to raise this issue in the floor of the House, the Jantar Mantar protests. And now he's talking about how there needs to be a discussion on this and also an official statement from the government, maybe the Prime Minister, on this. What exactly has the Congress party sought from the Speaker and from the government with regard to the protest that took place yesterday?
4: Well, certainly a big charge by the Congress President Mallikarjun Kharge, the NRP charge over the government, and stated that this government has completely lost its faith in the democracy because it is lack of accountability that this government really upholds. There is no accountability in this government is something that Mallikarjun Kharge went on to say. Asking the government that when he stood up in the Rajya Sabha, he wanted to raise up

0: clear for this government. Unless they act, this protest will spread across the country.
1: हमने कभी ऐसा नहीं देखा, इतनी असंवेदनशील सरकार कभी देखी नहीं, इतने तानाशाही जैसा बर्ताव कभी देखा नहीं है। और घमंड, कॉकरोच है, मार डालो, ये अप्रोच है इनका।
2: See, we know that like the last few days students has been protesting in Delhi and today all the students has been severely like attacked by the Delhi police and we strongly condemn the act of Delhi police on this on the attack on the students and apart from that like the central government should call the students. They have already called but it is too late, but they have to talk to the students and fulfill their request because it is a genuine request. It is not only theirs but it is a request of all over India because like whatever they have asked, is a very genuine request, and definitely central government should fulfill the request and make the protest inform the students and get the protest resolved as soon as possible.
3: ज़्यादा आप लोग भी अंदर आप लोग सब लोग कितना घबरा गए थे और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे और सब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अंदर कैद हो गए और हमें जब एडजर्न भी हुआ हम कहीं मूव नहीं कर पाए थे। आप लोगों ने देखा किस तरह से मॉब जो है किस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी। कल एक वक्त तो ये था हम सब कहेंगे कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे, तो लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ, उन्होंने जो है हमारे बीच में शील्ड बनकर खुद पर जो है पथराव नहीं भेजे या चोटें खाई, लेकिन जनमानस को कोई हानि नहीं होने दी। तो
4: अनशन पे बैठे हैं, आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, कोई उनसे जाके एंगेज नहीं करता। जब सब इकट्ठे होके बच्चे यहाँ पे आते तो किस बुरी तरह से उनको मारा पीटा जा रहा है, किसी की टांग तोड़ दी, किसी के सर फोड़ दिया। वो डंडे लेके भी नहीं आए थे, वो यहाँ पे मतलब बच्चे हैरान है, ये छोटे 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं जो हैरान है कि हमारे साथ ये क्या हो गया। तो बहुत दुख होता है कि संवेदनशील इशू है उसको एक तरीके से आपको सेंसिटिविटी के साथ आप ऐसे ही आप इंस्टिगेट करेंगे, इंसाइट करेंगे और दबाएंगे उनकी मुश्किलों। आप पार्लियामेंट में भी नहीं उठाने देंगे, ना बच्चे उठा सकें ना हम पार्लियामेंटेरियंस उठा सके, तो इस तरीके से मुद्दों को दबा के कैसे काम चलेगा।
5: मेरा मानना है कि न प्रोटेस्टर जो है वो देशद्रोही हैं और न पुलिस जो है वो दुश्मन है, लेकिन जो है वो पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों का किसी को पुर्जा नहीं बनने देना चाहिए। और जो है वो पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों का अगर कोई टूल बनाने की उन्हें कोशिश करेगा और उन्हें जो है वो जंतर मंतर में झोंक करके खुद छू मंतर हो जाएगा, तो इससे भी होशियार रहने की ज़रूरत है। और इस तरह के जो प्रयोग हैं ये कोई नए नहीं है, ये लगातार इस तरह के प्रयोग जो है पिटे हुए पॉलिटिकल पार्टियों के इस तरह के प्रयोग चलते रहे हैं। इस तरह की पिटी हुई पॉलिटिकल पार्टियां कभी खुद सामने आती हैं और कभी जो है अपने प्राक्सी पार्टनर्स को लेकर के सामने आती हैं, ये इनका रिवाज और मिजाज बन गया है।
6: All right, we have news just coming in that Leader of Opposition Lok Sabha Rahul Gandhi has spoken out and he will be meeting with the injured protesters at the RML hospital is what we're being told. Rahul Gandhi has also questioned the Prime Minister's silence. He has said, and I'm quoting him here, "Why is the PM silent? He should apologize." I have Aishwarya joining me live. Aishwarya, we are going to see rather Rahul Gandhi visit RML hospital to meet the injured. What are the details you have? Also, he's spoken out questioning what he calls the silence of the Prime Minister on the issue. What are the details?
7: Well, sources indicating that in the meeting that was called in by Mallikarjun Kharge, as far as the India Alliance meeting is concerned, in that particular meeting it was decided that the CJP protest and the attack on students will be the core issue, the major issue that the entire opposition will take up inside the parliament and outside the parliament, and certain decisions were taken. Of course, Rahul Gandhi, leader of opposition, will be meeting the injured students who have been admitted to RML hospital. He'll be leaving from the parliament very soon and he'll be heading to that. Another piece of news that came in from that particular meeting, the source indicated that the entire opposition bloc will walk from the parliament and will head towards Seva Teerth. There are certain movements that we are also witnessing here at Village Talk.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मांग मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: This is India Inc's Roll of Honor, recognizing the leaders shaping India's growth story, where ambition, enterprise and excellence meet. In the presence of the Finance Minister, Nirmala Sitharaman. NDTV Profit Business Leadership Awards, 26 July, on the NDTV Network.
10: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
11: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, Saturday.
10: The show that sets the prime time agenda.
11: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
10: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
11: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड ऑल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
12: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
13: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
14: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now.

0: a concrete discussion on what all happened yesterday. And we also want Home Minister Amit Shah to speak up on this entire matter. We have also seen just few minutes back pictures of JP Nadda holding meeting with the doctors of the RML, who are apprising him about the situation and the condition of all those students hospitalized here.
1: All right, Tejshri, thanks for joining me live. Tejshri outside the RML hospital, they're bringing you the latest. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi meeting with the protesters inside the hospital. Earlier in the day, you also had JP Nadda, who was still there, meeting with the injured protesters. Arvind Kejriwal also visiting the injured protesters at the hospital today. Now, protests over paper leaks have dominated day two of parliament, with the opposition upping the ante against the government. Opposition leaders Rahul Gandhi, the leader of opposition, as well as Akhilesh Yadav, met the Lok Sabha speaker earlier today. They are demanding that the protest that was held in Delhi yesterday and the alleged crackdown on the protests be debated in the House. The opposition has accused the centre of ignoring students' concerns. The government, on the other hand, has assured that the welfare of students and their interests are top priority for the government.
2: Issue students ki hai, youth ke future ki hai, aur ye jo kiya ja raha hai, logon ko mara ja raha hai, pita ja raha hai, this is completely un-Indian. Modi ji has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ye jo yuva hain, ye education system ke bare mein, testing system ke bare mein protest kar rahe hain. Pura desh janta hai ki education system, testing system is broken.
3: और लाठी चार्ज हुआ है और टीयर गैसेस छोड़े हैं और सभी स्टूडेंट्स को उनको मारपीट करके बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है. तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए. लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया.
4: नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए, तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो, इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया.
5: एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता. ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है. आज युवा बहुत ही दुखी है. एक्चुअली ये जो आप नाराज़गी देख रहे हैं, एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है. और इनकी सिंपल सी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज़ आते हैं. आप ना तो यहाँ पर आप चर्चा करना चाहते हैं, ना अपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं. ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं. ये तो मतलब ये सदन ही उनका है. हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ये रखा है.
6: अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कराया जाता है. तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक. उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है.

0: और वहीं उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े, और जो अत्याचार उनके साथ हुआ, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, सीधे आप उनके लोअर लाइक बॉडी में प्रहार करने से, जो सिस्टर जो कानून कहता है कि आपको पैरों पे मारना चाहिए, मारना ही अगर कोई उग्र हो रहा है, लेकिन आपने उनकी छाती में डंडे फाड़े, उनके सर फोड़ दिए। तो मैं समझती हूँ इतनी निर्मम सरकार है ये, और इनके इतना बच्चों ने आंसू बहाए हैं, हम पूरा सोशल मीडिया आज बच्चों के आंसुओं से भरा हुआ है।
1: और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है या टांके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर करके आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, और यहां तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था, लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे।
2: ये कल जो कुछ भी हुआ है वो कंसिस्टेंट बिहेवियर है सरकार का। जब लॉयर्स का प्रोटेस्ट हुआ इसी तरीके से मिसमैनेजमेंट किया गया, जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ लाल किले में इस तरह से मिसमैनेजमेंट किया गया, CAA के प्रोटेस्ट में आप लोग भूल रहे हैं वो उस विजुअल्स को चलाइए, जब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में घुसकर लाइब्रेरी में कैंटीन में स्टूडेंट्स को मारा गया, एक लड़के की आँख चले गई, इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से, और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। और जो विजुअल सामने आए हैं वो आप खुद देख लीजिए, हमको बोलने की क्या जरूरत है?
3: सी नाउ द गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड दैट दे कैन नॉट सप्रेस दिस प्रोटेस्ट और एजिटेशन, एंड व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे, व्हाट द कैपिटल सिटी हैज विटनेस्ड यस्टरडे, इट वाज रेजोनेटिंग विद द डिसकंटेंट, एंड इट इज एक्चुअली द डिसकंटेंट दैट इज ब्रूइंग एट द ग्राउंड लेवल. The writing on the wall is very clear for this government. Unless they act, this protest will spread across the country.
4: See, we know that like last few days students has been protesting in Delhi, and today all the students has been severely like attacked by the Delhi police, and we strongly condemn the act of Delhi police on this on the attack on the students. And apart from that, like the central government should call the students. They have already called, but it is too late. But they have to talk to the students and fulfill their request, because it is a genuine request. It is not only theirs, but it is a request of all over India, because like whatever they have asked, is a very genuine request, and definitely central government should fulfill the request and make the protest inform the students and get the protest resolved as soon as possible.
5: ज़्यादा आप लोग भी अंदर और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे, और सब जो पार्लियामेंट थे वो भी अंदर कैद हो गए, और हमें जब एक्चुअल भी हुआ हम कहीं मूव नहीं कर पाए थे. आप लोगों ने देखा किस तरह से मॉब जो है इस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी. कल एक वक्त तो ये था हम सब कहेंगे कि कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे, तो लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ, उन्होंने जो है हमारे बीच में शील्ड बनकर खुद पर जो है पथराव के नीचे या चोटें खाई, लेकिन जनमानस को कोई हानि नहीं होने दी. नहीं तो
6: अनशन पे बैठे हैं, आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, कोई उनसे जाके इंगेज नहीं करता. जब सब इकट्ठे होके बच्चे यहाँ पे आते तो किस बुरी तरह से उनको मारा पीटा जा रहा है, किसी की टांग तोड़ दी, किसी के सर फोड़ दिया. वो डंडे लेके भी नहीं आए थे, वो यहाँ पे मतलब बच्चे हैरान है, ये छोटे 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं जो हैरान है कि हमारे साथ ये क्या हो गया. तो बहुत दुख होता है कि संवेदनशील इशू है उसको एक तरीके से आपको सेंसिटिविटी के साथ आप ऐसे ही आप इंस्टिगेट करेंगे, इंसाइट करेंगे और दबाएंगे उनकी मुश्किलों. आप पार्लियामेंट में भी नहीं उठाने देंगे, ना बच्चे उठा सकें ना हम पार्लियामेंटेरियंस उठा सकें, तो इस तरीके से मुद्दों को दबा के कैसे काम चलेगा?
7: मेरा मानना है कि न प्रोटेस्टर जो है वो देशद्रोही हैं और न पुलिस जो है वो दुश्मन है, लेकिन जो है वो पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों का किसी को पुर्जा नहीं बनने देना चाहिए। अब जो है वो पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों का अगर कोई टूल बनाने की उन्हें कोशिश करेगा और उन्हें जो है वो जंतर मंतर में झोंक करके खुद छू मंतर हो जाएगा, तो इससे भी होशियार रहने की ज़रूरत है। और इस तरह के जो प्रयोग हैं ये कोई नए नहीं है, ये लगातार इस तरह के प्रयोग जो है पिटे हुए पॉलिटिकल पार्टियों के इस तरह के प्रयोग चलते रहे हैं। इस तरह की पिटी हुई पॉलिटिकल पार्टियां कभी खुद सामने आती हैं और कभी जो है अपने प्राक्सी पार्टनर्स को लेकर के सामने आती हैं। ये इनका रिवाज और मिजाज बन गया है।
8: Aishwarya, my colleague joins me live. Aishwarya, there is to be a march by the opposition MPs to Seva Tirth. Has that started? What are the details you have for us? Also, at this point, it's very important to understand if there's an attempt or talks or back channel talks at this point to end the logjam in Parliament, day two, no business conducted.
9: The fresh update that is coming in from the opposition camp is that the leaders have decided to submit a memorandum to the President of India, rather marching towards the Prime Minister's office. And because President of India is not in the nation, it seems like the protest march will be delayed further. And whenever President will be back, the march from the Parliament to President will continue until and unless the demands of the opposition does not get fulfilled, as being presented in front of the Lok Sabha Speaker this morning by the opposition camp, the entire delegation that was led by Mr. Rahul Gandhi. Now, it is the government sources on the other side stating that yes, the talks are still on between the students and the government. The channels have been opened up. There will be next round of talks that is possible at the end of the day as well. Perhaps Home Minister Amit Shah yesterday conducted an internal meeting called in Dharmendra Pradhan, Piyush Goyal, Kiran Rijiju. And that meeting lasted for almost 4 hours, in which Home Minister Amit Shah took the stock of the situation. JP Nadda was told to speak to the CJP delegation, and the memorandum was later submitted to the government. The government had stated that let us have some internal deliberations on the demands that have been put forward and they will get back. Perhaps the government on their side has been stating that major reforms have taken place in the entire education system of the country. The NEET examination, the paper leak scandal that erupted, 13 people got arrested earlier, the investigation has taken place, the re-examinations were done, and the entire system is in place. Whatever there were wrongdoings, there has been strict punishment that will be given to those who have been found guilty or are indulged in the entire scam. So certainly government is defending on their own points of stating that how they have taken prior steps, but the opposition party is clearly demanding the resignation, accountability in the system, and more transparency towards the education system to the students as well.
8: So the big takeaway from this conversation is that opposition MPs will be submitting a memorandum to the President of India. Currently, the President is out of the country and is in North Macedonia. That's the latest that we have for you. Aishwarya, thanks for joining me live. Now, in a key NDA strategy meeting this morning, the Prime Minister, Narendra Modi, gave a strong message of assurance for the students. The Prime Minister declared that there is going to be zero tolerance towards paper leaks. He assured the NDA MPs that his government is fully committed to protecting the future of India's youth by ensuring fair, transparent examinations. At the NDA Parliamentary Party's Mangal Milan meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the Prime Minister highlighted the government's response. All right, so you have the union minister there, and these are live visuals that we're getting to you of the union minister meeting with the injured students at the RML hospital. Let's just dip in to see if we can pick up any audio. All right, there doesn't seem to be an audio.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आग प्योर मसाला।
10: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
11: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली and also visited multiple hospital wards.
12: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
13: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
14: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे। नाउ ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन।
1: नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए, तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है, और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया।
2: सरकार चलाते गेले कतगुलो डिसिप्लिन मांगते हैं। कल के दिल्ली ते आपनारा देखेछेन छात्र युवकदेर उपर कि अत्याचार होयेछे। पार्लामेंट थेके आमी शुनेछि जे प्रधानमंत्री गाड़ी घुरिये पालिये गेछे।
3: जो दिल्ली में हुआ है, आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ था तब एक बार जश्न हुआ था यहां पर, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये गुस्सा दिखाई दिया यहां पर, जहां सब कुछ इंतजाम सरकार का फेल हो गया। सरकार फेल हुई कब? जब उन्होंने नीट की परीक्षा की, नीट में चीट। कोई कल्पना कर सकता है कि इतने महत्वपूर्ण परीक्षा में इस तरह की खिलवाड़ हो जाए, उसको लेकर के गुस्सा है। आपने बातचीत बाद में भी की, ये बातचीत आप पहले भी तो कर सकते थे, आश्वासन पहले भी दे सकते थे। देश और युवा सरकार से नाराज है, वो दिल्ली में दिखाई दिया है।
4: बहुत ही ज्यादा आप लोग भी अंदर, आप लोगों ने
5: मैं
4: सब लोग घबरा गए और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे, और सब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अंदर कैद हो गए थे। और हमें जब एडजर्न भी हुआ, हम कहीं मूव नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों ने देखा किस तरह से मॉब जो है, किस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी। कल एक वक्त तो ये था, हम सब कहेंगे कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे। तो लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ, उन्होंने जो है हमारे बीच में शील्ड बनकर खुद पर जो है पथराव नहीं बेचे या चोटें खाई, लेकिन जनमानस को कोई हानि नहीं होने दी। नहीं तो
6: लाठी चार्ज हुआ है और टीयर गैसेस छोड़े हैं और सभी स्टूडेंट्स को उनको मारपीट करके बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है। तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था।
7: जब ये पूरा प्रदर्शन छात्रों के साथ,
8: देखिए प्रदर्शन छात्रों का था, छात्र हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, इनके साथ इस तरह का बर्ताव करना सही नहीं है।
7: अरुण जी, बच्चों को चोट भी आई आप लोग मिले?
8: बच्चों को चोट भी बहुत आई है। अभी जंतर मंतर पे मुझे पता चला है काफी बच्चे बैठे हैं, किसी को प्लास्टर है। मैं भी जंतर मंतर जाऊंगा उनसे मिलने के लिए।
9: एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत

जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है एक्चुअली। ये जो आप नाराज़गी देख रहे हैं, ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है।

0: अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक। उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है। और वहीं उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े, और जो अत्याचार उनके साथ हुआ, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, सीधे आप उनके लोअर लाइक बॉडी में प्रहार करने से, जो सिस्टर जो कानून कहता है कि आपको पैरों पर मारना चाहिए, मारना ही अगर कोई उग्र हो रहा है, लेकिन आपने उनकी छाती में डंडे फाड़े, उनके सर फोड़ दिए। तो मैं समझती हूँ इतनी निर्मम सरकार है ये, और इनके इतना बच्चों ने आंसू बहाए हैं, हम पूरा सोशल मीडिया आज बच्चों के आंसुओं से भरा हुआ है।
1: दिल्ली में जब कभी भी जनता अपने तकालीफ का इजहार करने के लिए, चाहे वो फार्मर एजुकेशन हो, चाहे वो लॉयर्स हो, या CAA का प्रोटेस्ट हो, या ये हो, हम ये बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकार इनसे डायलॉग नहीं करती, बातचीत नहीं करना चाहती, और नतीजा ही निकलता है कि पुलिस के जरिए से उन पर मारपीट होती है, तशद्दुद होता है, वायलेंस होता है। ये बड़ी ही तकलीफदेह बात है, और आप मेरी बात को भरोसा मत करिए, जो वीडियोज और विजुअल जो सारी दुनिया देख रही है, तो बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत हो रहा है।
2: See, now the government has realized that they cannot suppress this protest or agitation. And what has happened yesterday, what the capital city has witnessed yesterday, it was resonating with the discontent. And it is actually the discontent that is brewing at the ground level. The writing on the wall is very clear for this government. Unless they act, this protest will spread across the country.
3: We know that like the last few days students has been protesting in Delhi, and today all the students has been severely like attacked by the Delhi police, and we strongly condemn the act of Delhi police on this on the attack on the students. And apart from that, like the central government should call the students. They have already called, but it is too late, but they have to talk to the students and fulfill their request, because it is a genuine request. It is not only theirs, but it is a request of all over India, because like whatever they have asked, is a very genuine request, and definitely central government should fulfill the request and make the protest inform the students and get the protest resolved as soon as possible.
4: Now, even as we stay with the protests that are happening in the national capital, in a key NDA strategy meeting this morning, Prime Minister Narendra Modi gave a strong message of assurance for the students. Prime Minister declared that there is zero tolerance towards paper leaks. He assured NDA MPs that his government is fully committed to protecting the future of India's youth by ensuring fair and transparent examinations. At the NDA parliamentary party's Mangal Milan meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the Prime Minister highlighted the government's response to recent paper leak incidents, including conducting re-examinations where necessary. The Prime Minister also stressed that robust measures are being put in place to prevent such incidents in the future, and called for the strictest possible punishment for those involved in paper leak rackets. The message from the government is clear: no compromise on exam integrity or the aspirations of the students, even as the protests continue at Jantar Mantar, seeking accountability and transparency. Here is what the Prime Minister said, and this is Kiran Rijiju.
5: नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए, तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है, और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो, इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया, और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया, और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का परलीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल

0: करना चाह रही है इस मुद्दे पर और छात्रों के ऊपर जिस तरीके का एक्शन हुआ है ऐसे में सरकार को जवाब देना होगा। तो संसद के अंदर कांग्रेस ने और अपोजिशन ने इस पर डिस्कशन की मांग की और जब डिस्कशन को अलाउ नहीं किया गया तो हंगामा हुआ और पूरे दिन के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई। इसके बाद राहुल हॉस्पिटल गए, वहां पर जो इंजर्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद सीधा अपने फेलो एमपीज के साथ कांग्रेस पार्टी के वो पीएम प्रेसिडेंस के पास में धरने पर बैठ गए हैं और फिलहाल उनकी बात सुनने उनसे बातचीत करने के लिए पीएमओ में एमओएस जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं, उनके साथ कुछ अधिकारी भी हैं और फिलहाल वो बातचीत चल रही है। क्या बात बनेगी देखना होगा। मेरे साथ कुछ कांग्रेस के नेता हैं उनसे बात करते हैं। वेलका साहब, एमओएस पहुंच गए जितेंद्र सिंह बात करने के लिए, क्या आप लोग ये धरना खत्म करेंगे?
1: अरे भैया, पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि भाई हजारों करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, 30 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, उनके जो दोषी हैं आप मोदी जी के चहेते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। देश का किसान, देश का जवान आज सड़कों पे उतरा हुआ है और वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम उनसे जवाब मांगने के लिए आए हैं और हम ये चाहते हैं कि आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तमाम देश के लोग आज यहाँ उपस्थित है और हम उनका इस्तीफा मांगते हैं।
0: बात पहुंचे हैं
2: General moments from now, but there the Congress leaders demanding now not only the education minister's resignation, but now the prime minister. More reactions coming. Take a listen.
3: की मांग है, छात्रों की गूंज है, जो राहुल जी उनकी आवाज उठा रहे हैं। आज बात वही है कि सदन हो या सड़क हो, छात्रों की लड़ाई, छात्रों की आवाज हम हर जगह उठाएंगे।
0: कुमारी शैलजा कह रही है कि प्रधानमंत्री को खुद बात करनी होगी और इससे साफ है कि जिस तरीके से इस मुद्दे पर समर्थन मिल रहा है और सरकार घिर रही है, कांग्रेस का हौसला बढ़ रहा है और नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पूरा कांग्रेस के तमाम सांसद जो हैं वो पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री आवास के पास धरना देने के लिए। रेणुका चौधरी पहुंची हैं प्रधानमंत्री आवास पर। मैम,
4: देखिए, हमारी मैसेज वही है कि ये बच्चों के लिए न्याय चाहिए हमें और इस्तीफा चाहिए इन लोगों को, करें।
0: एमओएस जितेंद्र सिंह आए हैं बातचीत करने के लिए, क्या बात बनेगी? ये धरना कब तक चलेगा?
4: होम मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहे? ये इनकी डिपार्टमेंट है, जितने फौज को उतारे चार टाइप की यूनिफॉर्म पहन के लोग आए हैं, ये तो होम मिनिस्टर का है, तो वो क्यों बिल में घुस के बैठे हैं? आओ बाहर और बात करो।
0: क्या क्या क्या क्या इसी तरीके से एग्रेसिव स्टैंस जो है वो कांग्रेस का?
4: देखिए, हम बहुत शराफत से नोटिस दिए थे पार्लियामेंट में, चलने दिए क्या, बोलने दिए क्या? नहीं ना, तो और क्या चाह रहा है हमारे पास कार्यकर्ता? वर्कर्स गए वहाँ, उनको मारपीट करे, मेंबर पार्लियामेंट गए उनको मारपीट करे, तो हमारे पास और क्या चाह रहा है? आएंगे हम और ये भी पहचानेंगे, तेरे पास दुनिया का ताकत हो, कल तुम आम आर्मी को भी लाओ, हमारा सीना तैयार है। हम उनके वारिस हैं जो इस देश में वंदे मातरम और इन खिलाफ।
0: बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है रेणुका मैम कांग्रेस को इस इशू पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन सड़क पे धरना दे रहे हैं प्रधानमंत्री के रेजिडेंस।
4: अपॉर्चुनिटी अपने आप के लिए नहीं ढूंढ रहे, हम वो सर कर रहे हैं ताकि हम देशवासियों को और बच्चों को सुरक्षित देखें।
0: ठीक है, तो रेणुका चौधरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंची हैं, ये भी जहां पर धरना चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। और साफ तौर पर आप अगर हम बात करें कांग्रेस के सांसदों से, कांग्रेस के नेताओं से, उनको उनकी बातों से साफ लगता है कि कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है और निशाने पर सीधा प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, पहले पेपर लीक और फिर उसके खिलाफ जो छात्रों का आंदोलन हुआ उस पर जो कार्रवाई हुई पुलिस एक्शन।
5: जितेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? इन द पिक्चर यू कैन सी जितेंद्र सिंह ओवर देयर, यू नो, जस्ट इन फ्रंट ऑफ आवर कैमरा वेयर जितेंद्र सिंह अलोंग विद अदर पुलिस ऑफिसर्स एज वेल अ डिस्कशन विल बी हेल्ड नाउ सो एज़ टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। जितेंद्र जी, व्हाट वाज द डिस्कशन हेल्ड, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल? जितेंद्र जी, आप देखिए, जितेंद्र सिंह इन द विजुअल्स एक्सक्लूसिवली ऑन द कैमरा ऑफ एनडीटीवी होल्डिंग टॉक्स ओवर देयर, आफ्टर होल्डिंग टॉक्स विद राहुल गांधी, इंपॉर्टेंट विल बी टू सी, यू नो, वेदर दीज प्रोटेस्ट ओवर हियर एट 7 आवर्स विल बी एंडिंग ऑर नॉट, बिकॉज जितेंद्र सिंह ओवर देयर जस्ट एट द रेसिडेंस ऑफ राहुल गांधी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
8: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
9: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
10: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
11: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
12: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मेबी नॉट।
13: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
14: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
15: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
16: so many attacks,
15: the chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
8: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम वीकडेज एट 4 PM।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
11: सबका राजा आर प्योर मसाला।
12: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
13: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? Silver के लिए sterling mark, gold के लिए hallmark और
14: mustard oil के लिए सिर्फ P mark.
15: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
2: P mark, the mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
16: Launch control, 0 to 100.
17: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
18: This car makes no sense, yet it makes every sense.
19: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
20: Your friend said, ye le le. We said, maybe not.
21: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
4: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
22: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
23: Hello and welcome to Watch Prime 5 with
22: The show that sets the prime time agenda.
23: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
22: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
8: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Raut, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 PM.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
11: सबका राजा आर प्योर मसाला।
24: Breaking news coming in, viewers. This is regarding the protest that we have seen yesterday, and now Congress leaders, including Rahul Gandhi, are leaving Mallikarjun Kharge's residence. That's the Congress chief. And hold march to the Prime Minister's residence. Latest visuals on your screens coming up. This is Rahul Gandhi and Congress MP Kharge who are leading a protest and proceeding from the residence.

0: लेकर जा रही है, एक एक करके उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव कुछ देर पहले, और ये जो जवान है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से घसीट कर डिटेन कर रहे हैं। यह भी कहा गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से कि अब कोई भी अब परमिशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी। राहुल गांधी की अपील के बाद दिल्ली पुलिस कांग्रेस कमेटी और सेवा दल के कई कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे, और अब उसके बाद यहां से दिल्ली पुलिस के जवान अलग अलग बसेस में इन प्रोटेस्टर्स को यहां सर हिरासत में ले रहे हैं। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इनको भी यहां पर डिटेन किया है। और साफ तौर पर यहां पर जो कांग्रेस के सांसद हैं उनका कहना है कि अब यहाँ पर और ज़्यादा उग्र ये प्रदर्शन करने की उनकी अपील थी, उसके बाद लगातार अब यहाँ से सांसदों को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के बड़े ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुँचे हैं और उन लोगों को यह अपील कर रहे हैं कि आप यहाँ से धरना ख़त्म करें, क्योंकि ये कोई धरने की जगह नहीं है। देखिए एक और सांसद को किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान अब यहाँ से इस पुलिस की बस में डिटेन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने इस तरीके से ह्यूमन चेन बनाई हुई है, और अब एक एक करके यहाँ पर सांसदों को लेकर जाया जा रहा है। यानी कि जितेंद्र सिंह के उस बयान के बाद अब सरकार ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी क्योंकि अपनी बात से पलट गए हैं, उन्होंने पहले सिर्फ एक ही बात रखी थी कि पर संसद के अंदर हो, और उस डिस्कशन के बाद अब जब बात सरकार ने मान ली तो राहुल गांधी का कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो मांग रहे हैं। इसी के साथ साथ अब दूसरी ओर हम आपको के कई सांसद के साथ भी आए थे, और इसके बाद यहां पर अब उन सांसदों के साथ भी इसी तरीके से दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनको यहाँ पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये देखिए तस्वीरों में अलग अलग जो सांसद हैं दिल्ली पुलिस से, रैपिड एक्शन फोर्स तमाम जो सांसद हैं उनको अब यहाँ से ट्रैक किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। हम थोड़ा आगे जाएंगे और देखेंगे कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी भी इस प्रदर्शन में डटे हुए हैं या उनको भी धरना प्रदर्शन की जगह से हटा लिया गया है। हम तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ ही खड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सारे जो सांसद थे वो एक साथ यहाँ पर अभी भी राहुल गांधी के साथ डटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के बड़े आला अधिकारी ये मांग कर रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से आप हटें। हमारे साथ तेजश्री भी हैं। तेजश्री, आप बताएं आपकी तरफ क्या हो रहा है।
1: तस्वीरें हम आपको बताएंगे, बस के अंदर प्रदर्शनकारियों को ले जाया जा रहा है। लगातार एनडीटीवी आपको ये तस्वीरें दे रहा है, प्रदर्शनकारियों को बस के अंदर हिरासत में लिया गया है। उदित राज यहाँ पर कांग्रेस नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिन्हें हिरासत में ले लिया है, और साथ ही साथ ऊपर बस की तस्वीरें दिखाई। देखिए उदित जी, कई सारे नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, आप लोगों को डिटेन कर लिया है यहाँ से।
2: राहुल जी को, प्रियंका जी को और अखिलेश यादव जी, सभी लोग एमपीओं को अरेस्ट किया गया।
3: Right, so at this point, Ram, what we're witnessing is we also have the SP chief Akhilesh Yadav there. We are learning that Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi have also been detained by the police officials after this unauthorized sit-in and dharna by the Congress leaders and the Neta. We also have the RAF being deployed. They are now not only demanding the Pradhan's resignation, but a statement by the Home Minister. I'm going to go across to Tejshree. Join me from the spot. Tejshree, what's happening there right now? We're learning Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi detained.
1: Well, absolutely. Let me tell you the pictures over here of all these protesters being detained over here. But we are yet to get the pictures of Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi being detained. But yes, because some time back we also saw that SPG was present over here. The Delhi police personnel, the RAF, all present at this spot. The Home Secretary also visited the store.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
10: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
11: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
12: अरे मेरे राजा,
13: सबका राजा आर प्योर मसाला।
14: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
15: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
16: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
2: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
17: Assaulting a female doctor.
18: An 11-year-old kid who has unfortunately lost his life due to this ghastly accident.
17: 18 maternal deaths at government hospitals across Rajasthan.
19: College for the last 10 years, the college doesn't even exist.
20: The High Court has cancelled the bail granted to Mathre.
21: I very much doubt that Ramesh Mathre is going to forget NDTV in a hurry.
22: Major embarrassment for the BMC administration. Its own general body has rejected that internal inquiry.
23: Several of these women came to these hospitals to deliver their babies. Some of them never even made it back home alive.
24: AIIMS Jodhpur also took do an investigation on it.
25: The college exists only on paper.
26: मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में। हिंदू

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर प्योर मसाला।
8: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टेलिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क,
9: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
10: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
11: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों,
12: कुछ तो बात है इस दिल में।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर प्योर मसाला।
13: The news, Ayush. Since when do we do scripts? Fair point. Picture this. The biggest stage. Floodlights.
14: Wow.
13: 4K. The works.
14: Where's the hook?
13: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
14: Where's the hook?
13: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
14: Bro, where's the hook?
13: Cross-platform. Digital first. Virality.
14: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You got to be real in a world of reels. You got to be original in a world where everything seems generated.
13: That's it. That's what we're looking for.
14: The best campaigns.
13: The hottest trends.
14: The smartest brand moves on our new show.
13: But wait, what do we call it?
14: The Hook.
15: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर जेके टायर।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
9: वी आर ओवर जिमी।
10: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
11: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
12: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
13: अरे मेरे राजा,
14: सबका राजा आर प्योर मसाला।
15: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
16: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
17: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
18: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI/UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
19: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, R pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.

0: कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी हों और अखिलेश यादव हों, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा जो सांसद थे उन्हें सभी छोड़ दिया गया। तो देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से विपक्ष जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग या फिर छात्रों से हित से जुड़े हुए जो मांग है उसको लेकर किस तरह से मानसून सत्र में आवाज जो है वो उठाती है।
1: जी धन्यवाद दिव्यांकर। Let's take a listen to all the political reactions coming in on what all has happened in the national capital earlier today.
2: कि मेरे भाई बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। कि बच्चे हैं हमारे, भविष्य है हमारे, युवा हैं इस देश के, और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत पे हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है। तो वंदे मातरम का मतलब क्या है, मतलब क्या है, हमारी मातृभूमि क्या है, किसकी है, अगर हम अपने युवाओं को ही नहीं बचा सकते, उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते।
3: जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए। जो उन्होंने मांग रखी है उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए, और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया, और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है, लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चला उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें। सदन में यही मुद्दा उठाएंगे।
4: वी ऑल आवर लीडर ऑपोजिशन पुट फॉरवर्ड थ्री डिमांड्स। वन, धर्मेंद्र प्रधान शुड रिसाइन इमीडिएटली टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दिस सीबीएसई नीट लीकेजेस। नंबर टू, द केसेस एफआईआर केसेस अगेंस्ट द स्टूडेंट्स रिलेटेड टू द यस्टरडे इंसिडेंट्स शुड बी विथड्रॉन इमीडिएटली। Number three, there should be a concrete, specific discussion on CBSE NEET exam leakage, which we are demanding yesterday on
5: Rahul Gandhi ji arajakta ke pratik bankar ubhar rahe hain. Jis prakar se sansadiye jivan mein hamare kuch aise pad hote hain jo keval party vishesh ke nahi hote, Pradhanmantri केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है, वह स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति के परिचायक बनते जा रहे हैं।
6: We went there and very politely, very humbly, I tried to plead before Rahul Gandhi ji that this was not the manner in which he should be indulging, also did not behove a leader of his stature and the LOP and also a senior Congress leader. He said yes, he was ready to lift this dharna, to suspend this dharna, provided he was given an assurance that government was ready for a discussion in the parliament on the issue of NEET exam, the paper leakage, etc., etc., all those issues related to this. So I told him, I said, okay, very, very humbly and very honestly, I told him, just give me some time, I'll have to do a small exercise for this. So I got in touch with the top leadership of the government, and then I was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said, no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done. Now, this is not a gentlemanly behavior, because just a few minutes back, you told me that if I got the assurance from the government that they were ready for a debate in parliament on the NEET and the education related issues, you would call off your dharna immediately. But now you're saying no. No, he said, no, it's my wish. My demands have changed now.
1: On that note, we slip into a very short break. Come right back. More news and updates with my colleague Tanisha.
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: We are over, Jimmy.
9: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
10: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect.

0: future above politics. Here is how the political story turned out to be today, starting from afternoon to late at night.
1: When we went there, and very politely, very humbly, I tried to plead before Rahul Gandhiji that this was not the manner in which he should be indulging, also did not behove a leader of his stature and the LOP and also a senior Congress leader. He said yes, he was ready to lift this dharna, to suspend this dharna, provided he was given an assurance that government was ready for a discussion in the parliament on the issue of NEET exam, the paper leakage, etc., etc., all those issues related to this. So I told him, I said, okay, very humbly and very honestly, I told him, just give me some time. I'll have to do a small exercise for this. So I got in touch with the top leadership of the government, and then I was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhiji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahulji with this message, he said, no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done. Now, this is not a gentlemanly behavior, because just a few minutes back, you told me that if I got the assurance from the government that they were ready for a debate in parliament on the NEET and the education-related issues, you would call off your dharna immediately. But now you're saying no. No, he said, no, it's my wish. My demands have changed now.
2: राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। जिस प्रकार से संसदीय जीवन में हमारे कुछ ऐसे पद होते हैं जो केवल पार्टी विशेष के नहीं होते, प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है, वह स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति के परिचायक बनते जा रहे हैं।
3: We all our leader of opposition put forward three demands. One, Dharmendra Pradhan should resign immediately for taking the responsibility of all these CBC NEET leakages. Number two, the cases, FIR cases against the students related to the yesterday incidents should be withdrawn immediately. Number three, there should be a concrete specific discussion on CBSE NEET exam leakage, which we are demanding yesterday.
4: जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए। जो उन्होंने मांग रखी है उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए। और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया, और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है, लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें, सदन में यही मुद्दा उठाएंगे।
5: मेरे भाई बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। ये बच्चे हैं हमारे, भविष्य है हमारे, युवा हैं इस देश के। और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए, तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत पे हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है। तो वंदे मातरम का मतलब क्या है? मतलब क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है, किसकी है, अगर हम अपने युवाओं को ही नहीं बचा सकते, उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते?
0: And meanwhile, while we're talking about the protest, let's also talk about the rift that's there between the opposition,

0: Declared that there is zero tolerance towards paper leaks. He assured NDA MPs that his government is fully committed to protecting the future of India's youth by ensuring fair and transparent examinations. At the NDA parliamentary meeting, the Mangal Milan meeting that is called, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju also said that the Prime Minister highlighted the government's response to recent paper leak incidents, including conducting re-examinations wherever necessary. Now, the Prime Minister also said and stressed that the robust measures are being put into place to prevent such incidents in the future. And he's also called for the strictest punishment possible for those involved in the paper leak rackets. Now, the message from the government is very clear that there is no compromise on exam integrity or the aspirations of students. Here's a statement by Union Minister Kiran Rijiju.
1: NEET ke exam ke bare mein adarniya Pradhan Mantri ji ne kaha hai ki jab paper leak ka khabar aaye turant sarkar ne karwai kiya aur 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है जो लोग दोषी पाए गए हैं जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है पाप काम किया है उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है.
0: Well, the BJP has posted a video of the Prime Minister stating that the PM is always working to secure the future of the country's children. Does that video?
2: ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सकें इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूँ आपके बच्चों के भविष्य के लिए.
0: That's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.
3: The Shiv Sena Shinde faction corporator seen assaulting a female doctor.
4: An 11-year-old kid who has unfortunately lost his life due to this ghastly accident.
3: 18 maternal deaths at government hospitals across Rajasthan.
5: College for the last 10 years, the college doesn't even exist.
6: The High Court has cancelled the bail granted to Mathre.
7: I very much doubt that Ramesh Mathre is going to forget NDTV in a hurry.
8: Major embarrassment for the BMC administration. Its own general body has rejected that internal inquiry.
9: Several of these women came to these hospitals to deliver their

0: मांगों को मान लें।
1: कल भी यही मुद्दा आप लोग उठाएंगे
0: सदन में, यही मुद्दा उठाएंगे।
2: मेरे भाई बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। ये बच्चे हैं हमारे, भविष्य है हमारे, युवा हैं इस देश के। और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत में हम डिबेट फिर से कर रहे हैं।

0: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
1: Your friend said, yeah, Lily. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
2: The news.
3: Ayush, since when do we do scripts? Fair point. Picture this. The biggest stage. Floodlights.
2: Wow.
3: 4K. The works.
2: Where's the hook?
3: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
2: Where's the hook?
3: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
2: Bro, where's the hook?
3: Cross-platform, digital first, virality.
2: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You've got to be real in a world of reels. You've got to be original in a world where everything seems generated.
3: That's it. That's what we're looking for.
2: The best campaigns.
3: The hottest trends.
2: The smartest brand moves on our new show.
3: But wait, what do we call it?
2: The Hook.
4: This is India Inc.'s Roll of Honor, recognizing the leaders shaping India's growth story, where ambition, enterprise, and excellence meet. In the presence of the Finance Minister, Nirmala Sitharaman, NDTV Profit Business.
5: Thank you for staying with NDTV. Well, in a key NDA strategy meeting this morning, the Prime Minister gave a very strong message of assurance for the students. Prime Minister declared that there is zero tolerance towards paper leaks. He assured NDA MPs that his government is fully committed to protecting the future of India's youth by ensuring fair and transparent examinations. Now, at the NDA parliamentary Mangal Milan meeting, which is called Parliamentary Affairs Minister, Kiran Rijiju said that the Prime Minister highlighted the government's response to recent paper leak incidents, including conducting re-examinations wherever it is necessary. The Prime Minister also stressed that robust measures are being put in place to prevent such incidents in the future. And he's also called for strictest possible punishment for those who are involved with the paper leak rackets. The message from the government is clear that no compromise will be made on exam integrity or the aspirations of students. Here is what Union Minister Kiran Rijiju has to say on the matter.
6: NEET ke exam ke bare mein adarniya Pradhan Mantri ji ne kaha hai ki jab paper leak ka khabar aaye turant sarkar ne karwai kiya aur 13 logon ko arrest karke jail mein dal diya gaya hai aur saath saath jo छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है जो लोग दोषी पाए गए हैं जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है पाप काम किया है उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है।
5: Well, the BJP has posted a video of the Prime Minister stating that the PM is always working to secure the future of the country's children. Here's that video.
7: ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सके, इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूँ आपके बच्चों के भविष्य के।
5: That's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.
8: We are over, Jimmy.
9: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
10: They led, they redefined the business conversation. Now, India Inc.'s finest take center stage. Who will win the NDTV Profit Business Leadership Awards? 26 July on the NDTV Network.

0: क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र है? राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट एंड नो गवर्नमेंट हैज द राइट टू सप्रेस दैट राइट. दिस इज अ डेमोक्रेसी.
1: ओके, अ ड्रामेटिक नाइट इन सेंट्रल दिल्ली. रजत, प्रियंका एंड कुशल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी हियर टुनाइट. Obviously, I'm going to have a late night at office because this drama is continuing in VIP Delhi. But a short while ago, I also spoke to the topper of the re-NEET exam. His paper had leaked. His paper was cancelled. He had to take the paper again. And now he's the All India topper in the NEET amidst all these protests. Here's my interview with him. And this has been one of the most turbulent years in the history of India's biggest medical entrance exam, NEET, which has now become a byword for everything that ails India's examination system, as you've seen. A paper leak, nationwide outrage, weeks of uncertainty, a cancelled exam, and then a second chance. For 48 hours, there's been a raging protest in India's capital over what happened with NEET. But through all that turbulence, one student not only kept his nerve, but actually improved his score to emerge as the country's joint NEET topper. Welcome, Panchal Bansal. First of all, many, many congratulations. Topper in one of the most turbulent NEET years ever. I'm sure it is still sinking in for you. What has this moment meant for you? What has this moment felt like? Congratulations, Panchal.
2: Thank you, first of all. And it means, it really means a lot to me ki first NEET mein se mera score kafi improve hua tha and now I am a NEET topper. Main bahut khushi hui aur excited tha jab mera result aaya tha.
1: When the original NEET was cancelled, Panchal, in May after that paper leak, aapka pehla reaction kya tha? What was your first reaction? क्या आप गुस्से में थे? Were you angry? Were you in disbelief? Did it make you more determined?
2: Initially, मेरे को थोड़ा despairment और sad feel हुआ था, but after like 1-2 hours, तो मैंने इसको एक positive aspect से देखा, and I मतलब इसके अंदर मेरे को इससे मेरे को motivation आया and मतलब determination मिली कि इस बार और अच्छा करूँगा.
1: You improved, Panchal. You improved from around 706, if I'm not mistaken, in your first exam to 715 yeah. in the re-NEET. What changed in those extra weeks? Kya secret tha? How did you improve your score?
2: See, I didn't change anything in my schedule. Jo mera pehle NEET se pehle schedule tha, I just followed that. But I just felt like I just have to give it my all. In these last few days, like it was hardly like 1.5 months. So I felt like I just should give the maximum I can give. And I just leave the rest up to God.
1: Your mother, you know, I've read in some interviews, Panchal, that your mother told you to treat this extra time as an opportunity, as a blessing. How much did that advice shape your mindset?
2: Very much, because initially like I was like, क्यों कैंसल हुआ? इवन दो मतलब क्योंकि मेरे को पहले भी जीएमसी मिलना था और दूसरे मतलब किसी भी मतलब स्टूडेंट के मन में तो आता है कि एक बार तो हो गया, अगली बार ये भी नहीं आया तो फिर मैं क्या करूँगा. तो वो डर तो रहता ही है सबको. और फिर पर मैंने सोचा कि मैं नेगेटिविटी क्यों भी लाऊं, आई जस्ट फॉरगेट दिस, अपना मेन गोल पे फोकस करूँ, जो होगा अच्छा होगा. एंड
1: NEET के पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट हैव बीन टेकिंग प्लेस फॉर मेनी वीक्स नाउ. इट हैज सीन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द स्ट्रीट्स डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी. यू स्टेड वेरी फोकस्ड ऑन योर प्रेपरेशंस. आप पढ़ाई पे ध्यान दिया आपने, प्रेपरेशंस पे ध्यान दिया आपने. डिड यू एवर फील कॉन्फ्लिक्टेड बिटवीन यू नो स्पीकिंग आउट, जॉइनिंग द मूवमेंट और कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर एग्जाम? बिकॉज इट वॉज ड्यूरिंग योर स्टडीज दैट दिस एजिटेशन वॉज टेकिंग प्लेस.
2: बहुत ही इनिशियली मेरे को हल्का सा डाउट हुआ कि मतलब ऐसा होता क्यों है. मतलब पेपर लीक में मेरे को थोड़ा गुस्सा आता है, सबको थोड़ा थोड़ा आता है शुरू में. आई थॉट लाइक मे बी गॉड हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी that I need to improve my score, I could have scored better. So I thought, why

0: कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है।
1: Well, the BJP has posted a video of the Prime Minister stating that the PM is always working to secure the future of the country's children. Here's that video.
2: ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सकें, इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूँ आपके बच्चों के भविष्य के।
1: That's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.

0: really put their future above politics. Here is how the political story turned out to be today, starting from afternoon to late at night.
1: When we went there, and very politely, very humbly, I tried to plead before Rahul Gandhiji that this was not the manner in which he should be indulging, also did not behove a leader of his stature and the LOP and also a senior Congress leader. He said yes, he was ready to lift this dharna, to suspend this dharna, provided he was given an assurance that government was ready for a discussion in the parliament on the issue of NEET exam, the paper leakage, etc., etc., all those issues related to this. So I told him, I said, okay, very humbly and very honestly, I told him, just give me some time. I'll have to do a small exercise for this. So I got in touch with the top leadership of the government, and then I was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhiji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahulji with this message, he said, no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done. Now, this is not a gentlemanly behavior, because just a few minutes back, you told me that if I got the assurance from the government that they were ready for a debate in parliament on the NEET and the education-related issues, you would call off your dharna immediately. But now you're saying no. No, he said, no, it's my wish. My demands have changed now.
2: Rahul Gandhi ji, arajakta ke pratik bankar ubhar rahe. जिस प्रकार से संसदीय जीवन में हमारे कुछ ऐसे पद होते हैं जो केवल पार्टी विशेष के नहीं होते, प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है, वह स्पष्ट संकेत देता है कि यह विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति के परिचायक बनते जा रहे हैं।
3: वी ऑल आवर लीडर ऑफ ओपोजिशन पुट फॉरवर्ड थ्री डिमांड्स। वन, धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन इमीडिएटली टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दिस सीबीएसई नीट लीकेजेस। नंबर टू, केसेस एफआईआर केसेस अगेंस्ट द स्टूडेंट्स related to the yesterday incidents should be withdrawn immediately. Number three, there should be a concrete specific discussion on CBSE NEET exam leakage, which we are demanding yesterday.
4: जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए। जो उन्होंने मांग रखी है, उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए। और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया, और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है, लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें, सदन में यही मुद्दा उठाएंगे।
5: मेरे भाई बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। ये बच्चे हैं हमारे, भविष्य है हमारे, युवा हैं इस देश के। और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए, तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत पे हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है। तो वंदे मातरम का मतलब क्या है? मतलब क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है, किसकी है, अगर हम अपने युवाओं को ही नहीं बचा सकते, उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते?
0: And meanwhile, while we're talking about the protest, let's also talk about the rift that's there between the opposition.

0: सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का, हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है।
1: Well, the BJP has posted a video of the Prime Minister stating that the PM is always working to secure the future of the country's children. Here's that video.
2: ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सके, इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूँ आपके बच्चों के भविष्य के लिए।
1: That's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.

0: senior Congress leader. He said yes, he was ready to lift this dharna, to suspend this dharna, provided he was given an assurance that government was ready for a discussion in the parliament on the issue of NEET exam, the paper leakage, etc., etc., all those issues related to this. So I told him, I said, okay, very humbly and very honestly, I told him, just give me some time. I'll have to do a small exercise for this. So I got in touch with the top leadership of the government, and then I was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said, no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done. Now, this is not a gentlemanly behavior, because just a few minutes back, you told me that if I got the assurance from the government that they were ready for a debate in parliament on the NEET and the education-related issues, you would call off your dharna immediately. But now you're saying no. No, he said, no, it's my wish. My demands have changed now.
1: राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। जिस प्रकार से संसदीय जीवन में हमारे कुछ ऐसे पद होते हैं जो केवल पार्टी विशेष के नहीं होते, प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है, वह स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति के परिचायक बनते जा रहे हैं।
2: We all, our leader of opposition, put forward three demands. One, Dharmendra Pradhan should resign immediately for taking the responsibility of all these CBSE NEET leakages. Number two, the cases, FIR cases against the students related to the yesterday incidents should be withdrawn immediately. Number three, there should be a concrete specific discussion on CBSE NEET exam leakage, which we are demanding yesterday.
3: जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए। जो उन्होंने मांग रखी है उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए। और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया, और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है, लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चला उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें। सदन में यही मुद्दा उठाएंगे।
4: मेरे भाई बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। ये बच्चे हैं हमारे, भविष्य हैं हमारे, युवा हैं इस देश के। और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए, तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत पे हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है। तो वंदे मातरम का मतलब क्या है? मतलब क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है, किसकी है, अगर हम अपने युवाओं को ही नहीं बचा सकते, उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते?
5: And meanwhile, while we're talking about the protest, let's also talk about the rift that's there between the opposition. While Aam Aadmi Party versus Congress war of words has also erupted as Congress MPs and top leaders led by Rahul Gandhi sat on dharna outside the Prime Minister's residence today, the Aam Aadmi Party has accused the Congress of trying to steal the spotlight from the CJP protest. It was former Delhi Chief Minister Atishi who hit out asking how was Congress even allowed to congregate near the Prime Minister's house when CJP was not even allowed to march to the parliament. Now, Aam Aadmi Party is saying that the Congress and the BJP

0: heat paper leak issue?
1: जी बिल्कुल, देखिए चाहे वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर सीजीपी जो है उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है, जिस तरह से नीट पेपर लीक के साथ साथ तमाम जो दूसरी परीक्षाएं हुई हैं वो पेपर उसकी उसके जो पेपर है उसकी जो एग्ज़ाम है वो उस दौरान लीक की जो पेपर लीक है वो समस्या सामने आई, और इसी को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष जो हैं और इनके साथ तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं वो आज पीएम आवास के पास पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया, लगभग 3 से 3.5 घंटे तक वहां पर बैठकर उन्होंने प्रदर्शन किया, और जब दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो उस दौरान ये भी तस्वीरें निकल कर आई कि जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं और इसके बाद तमाम जो नेता है वो वहाँ पर ज़मीन पर भी बैठ गए, तो इस दौरान झड़प वाली जो स्थिति है वो भी देखने को मिली, और इसके बाद नेताओं को हिरासत में लेकर अलग अलग जो थाने हैं वहाँ पर लाया गया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम जो दूसरे नेता हैं उन्हें छत्रसाल स्टेडियम, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ मेरे ठीक पीछे, इसी स्टेडियम में लाया गया था, और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक, यानी कि बात करें तो 6:30 बजे जब राहुल गांधी और तमाम दूसरे सांसदों को वहां से उठाया गया, तो उसके बाद तकरीबन 8 बजे के आसपास यहां पर छत्रसाल स्टेडियम सभी जो नेता हैं उन्हें हिरासत में लाकर यहां पर पहुंचे थे, और 9:30 बजे के बाद सभी नेताओं को जो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी हों और अखिलेश यादव हों, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा जो सांसद थे उन्हें सभी छोड़ दिया गया। तो देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से विपक्ष जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग या फिर छात्रों से हित से जुड़े हुए जो मांग है उसको लेकर किस तरह से मानसून सत्र में आवाज जो है वो उठाती है।
0: जी धन्यवाद दिव्यांकर। Let's take a listen to all the political reactions coming in on what all has happened in the national capital earlier today.
2: मेरे भाई बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। ये बच्चे हैं हमारे, भविष्य है हमारे, युवा हैं इस देश के, और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत पे हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है। तो वंदे मातरम का मतलब क्या है, मतलब क्या है, हमारी मातृभूमि क्या है, किसकी है, अगर हम अपने युवाओं को ही नहीं बचा सकते, उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते।
3: जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए, जो उन्होंने मांग रखी है उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए, और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया, और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है, लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें, सदन में यही मुद्दा उठाएंगे।
4: वी ऑल आवर लीडर ऑफ ओपोजिशन पुट फॉरवर्ड 3 डिमांड्स। 1, धर्मेंद्र प्रधान शुड रिसाइन इमीडिएटली टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दिस सीबीएसई नीट लीकेजेस। 2, केसेस FIR केसेस अगेंस्ट द स्टूडेंट्स रिलेटेड टू द यस्टरडे इंसिडेंट्स शुड बी विथड्रॉन इमीडिएटली। 3, there should be a concrete specific discussion on CBSE NEET exam leakage which we are demanding yesterday on
5: राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। जिस प्रकार से संसदीय जीवन में हमारे कुछ ऐसे पद होते हैं जो केवल पार्टी विशेष के नहीं होते, प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है, और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है वह स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति के परिचायक बनते जा रहे हैं।
6: Went there and very politely, very humbly, I tried to plead before Rahul Gandhi ji that this was not the manner in which he should be indulging, also did not behave a leader of his state.

0: India Inc.'s best and brightest.
1: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
2: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
3: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth, but also on bringing good governance.
4: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
5: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
6: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
7: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
0: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
8: They built, they led, they redefined the business conversation.
9: Thank you for staying with NDTV. Well, in a key NDA strategy meeting this morning, the Prime Minister gave a very strong message of assurance for the students. The Prime Minister declared that there is zero tolerance towards paper leaks. He assured NDA MPs that his government is fully committed to protecting the future of India's youth by ensuring fair and transparent examinations. Now, at the NDA parliamentary Mangal Milan meeting, which is called Parliamentary Affairs Minister, Kiran Rijiju said that the Prime Minister highlighted the government's response to recent paper leak incidents, including conducting re-examinations wherever it is necessary. The Prime Minister also stressed that robust measures are being put in place to prevent such incidents in the future. And he's also called for strictest possible punishment for those who are involved with the paper leak rackets. The message from the government is clear that no compromise will be made on exam integrity or the aspirations of students. Here is what Union Minister Kiran Rijiju has to say on the matter.
10: NEET ke exam ke bare mein adarniya Pradhan Mantri ji ne kaha hai ki jab paper leak ka khabar aaye turant sarkar ne karwai kiya aur 13 logon ko arrest karke jail mein dal diya gaya hai aur sath sath jo chhatra hai students hai उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है जो लोग दोषी पाए गए हैं जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है पाप काम किया है उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है
9: Well, the BJP has posted a video of the Prime Minister stating that the PM is always working to secure the future of the country's children. Here's that video.
11: ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो तब आप अपने बच्चों को विकसित

0: भारत में बड़े करते देख सकें, इसमें मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं आपके बच्चों के भविष्य के लिए।
1: That's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.

0: 45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सके, इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं आपके बच्चों के भविष्य के लिए।
1: That's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.